सुर में गाना सीखिए पाधानी सा फ्रॉम सारेगामा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दोस्तों थोड़ी देर बाद आरंभ होगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों आज गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ आरंभ करते हैं एक खूबसूरत सा कार्यक्रम को।
1: हेलो,
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: तेरे ब्याह में गोली चलेगी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: लिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख

0: 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: जी नाम बताएं।
3: हेलो
4: सर, नमस्ते।
3: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
4: नमस्ते सर। सर गाना बताइए, कौन सा सुनना चाहोगे?
3: गीत तो सुनना, पिक्चर का नाम है दिल तेरा आशिक, उसी पिक्चर का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कपिल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा?

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
1: मोनिका सवाई माधोपुर से।
0: मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सर, तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सुनम बेशक मेरा।
0: बिल्कुल सुना रहे मैम आपको, आपकी वॉइस का बेहतरीन सा गाना रेडियो।

0: जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।
1: तू मेरा है। 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर।
4: गुड मॉर्निंग मैडम।
5: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
4: मेरा नाम है सोहेल सर। एसवी,
5: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
4: आज टोली गंगापुर सिटी में।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: वही हसीना जब रोड जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
5: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
6: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक, फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
7: हेलो
8: जी, नाम क्या है सर आपका?
7: मैडम नमस्कार।
8: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
7: मैडम मेरा नाम शाकिर मोहम्मद है।
8: कहाँ से बात कर रहे?
7: गंगापुर सिटी।
8: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
7: मैडम आप आए बाहर आए।
8: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।
7: मैडम सुनवाना, जरूर सुनवाना है गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है तालीम खान जी की लोको कॉलोनी गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम बंटीलाल सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मऊ कला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जीना सिर्फ मेरे लिए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाने। हेलो।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शर्मा
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मऊ कला गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम?
0: एफएम रेडियो से।
1: एफएम रेडियो सिटी से या सवाई माधोपुर से?
0: गंगापुर सिटी से।
1: गंगापुर सिटी। मुझको लिख ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, भजन है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: दिनेश मीणा।
0: दिनेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं दिनेश जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तेरे एक्स में आ गया मेरे में खूब मली बदनामी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: रोशन,
4: रोशन कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मदीना मस्जिद के सामने से।
4: अच्छा बताएं रोशन जी,
3: दुकान पे सुन,
4: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: जब जब जब जब तुमको पुकारा मैं चली आई नदिया किनारे।
4: बिल्कुल सर, आ जाएगी नदिया किनारे और सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
3: चल नहीं।

0: हेलो हेलो
1: सर नमस्कार, ब्रजमोहन गंगा पक्षी थी।
0: ब्रजमोहन जी नमस्कार, बताएं ब्रजमोहन जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर जी आप वो सुना दो, कोयला फिल्म का गाना है, सांसों की मोती माला वो कुछ होता है गाना है।
0: बिल्कुल सर सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो
4: हेलो जी, नाम बताएं सर।
3: रोहित।
4: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: आदर्श नगर गंगापुर सीट।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: लोगो रे एक सुना करी।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो DS में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जम्मू से केशव शर्मा जी, बताएं कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर जी।
0: कैसा मौसम है जम्मू का फिलहाल?
1: गर्मी तो आज ही गर्मी है, तीन चार दिन तो मौसम ठीक रहा।
0: हाँ, हमारे यहाँ भी गंगापुर सिटी में बहुत गर्मी पड़ रही है। बताएं सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: आज सर जी हमें लैला मजनू का सुना दिए जी, लिख कर तेरा नाम जमी पर लैला लैला करता हूँ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो।
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: आरबी गुजर बोल रहे गंगापुर से।
3: आरबी गुजर गंगापुर से, बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: मैं जो पठान मेरी गाना।
3: बिल्कुल सुना रहे मैम, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: वंदना।
0: वंदना जी, गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तो दूसरे पिछड़ के दिन का है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नाम बता इसका एक गाना।
2: हेलो
3: हेलो, राधे
2: राधे राधे सर, नाम बताएं।
3: धीरू भाई ठाकुर महूकला।
2: धीरू भाई ठाकुर महूकला से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: गाना है वो चांदनी वाला।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, चांदनी वाला सुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आप

0: याद है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।
3: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: हेलो।
5: हेलो
4: जी, नमस्ते।
5: नमस्ते,
4: नाम बताएं सर आपका।
5: गोलू मीणा।
4: गोलू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: स्वाई माधोपुर से।
4: बताएं गोलू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
5: खूब मली बदनामी हमें तेरे याद आ।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: हेलो जी, नाम बताएं सर आपका।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गुड़ासी से।
0: अच्छा, गुड़ासी गांव से बोल रहे हैं। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ब्रेथलेस।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से।

0: हेलो, नाम बताएं आपका।
1: मानसी।
0: मानसी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं मेरी बड़ी बहन से।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: खुशी।
0: खुशी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल खुशी, सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी।

0: गुड़िया आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
2: जी राजू यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से।
0: राजू यादव जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: गाना सुनेंगे, मूवी का नाम है दिलवाले, कितना हसीन चेहरा कितने प्यारी आंखें।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम अल्ताफ है मैडम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: जी गंगापुर सिटी से, लोकू कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरे नाम हमने किया है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: शुभम सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हरियाणवी सॉन्ग।
1: ओके, से सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: ए अंगूरी देख,
1: तेरा बंदड़ा हीरो अंडा लाया है।
2: गणी आसन की जरूरत ना है, हीरो अंडा दो रहा किसे ना भी नान दियो। चल आ जाता है, अब तक क्यों है राम फल, चल आ जाता है।

0: ओके मैम,
1: हो यार
2: रेलवे।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलेज।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरा दिल खो गया है, किसी का हो गया है।
0: ओके मैम,
1: हो यार।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: वंदा कार्तिक क्या करते हो?
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: कार्तिक।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: रशियन बंदा।
0: रशियन बंदा। कार्तिक भी क्या करते हो? स्कूल जाते हो क्या?
2: हाँ।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: फोर्थ।
0: कितने साल के हो?
2: एट।
0: एट साल के हो? और क्या, आज तो छुट्टी होगी ना स्कूल की?
2: हाँ।
0: क्या सब्जेक्ट पसंद है आपको?
2: मैथ।
0: अच्छा मैथ, तो आगे क्या बनना चाहोगे आप?
2: इंडियन आर्मी।
0: इंडियन आर्मी। खाने में क्या पसंद है कार्तिक जी? सब्जी दाल बस। सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना, है ना?
2: ठीक है।
0: ओके।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रीना कश्मीर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तारे तारे कितने नील बदन पे तारे।
1: कौन सा सर?
0: तारे तारे कितने नील बदन पे तारे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, नाम क्या है आपका?
0: खुशी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बाबी तू पटोला।
1: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: हेलो हेलो
3: डीडी कौन पुराने
2: सुनना चाहोगे?
3: इशा हो या दिल आखिर टूट जाता है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, नाम क्या है?
1: कौन पुराने
0: कहाँ से बात सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चिनरी चिनरी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

तो वक्त हो चुका है 12:22 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रही हो कार्यक्रम में लो फरमा।

0: नमस्कार मैडम।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: मैं रतन लाल बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी के पास से।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: डंडोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: रिहान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जयपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: बलम तेरा 47 वाला।
0: ओके सर। पतली पत

0: जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते मैडम।
0: नाम क्या है?
1: सुनील मीना।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: पुलिस चौकी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सात जन्मों में तेरे तेरे प्यार करूंगा मैं, साजा तू मेरी मुमताज बनेगी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका?
1: निशा शर्मा, गंगा पुष्प कैसे हैं
2: जी? मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: बिछड़ के आज रो दिए जो मैम, कल शाम को नहीं सुन पाई थी मैम।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
1: आज ऑफ नहीं है मैम, छुट्टी नहीं है आज?
2: नहीं,
1: मैं सोचती थी छुट्टी है आज, इसलिए मैंने जल्दी कॉल नहीं किया। अभी वो तो एफएम के सॉन्ग सुने थे, तब फरमाइश चल रही थी तो कॉल किया।
2: संडे की छुट्टी नहीं रहती हमारे एफएम में।
1: लास्ट संडे की तो थी?
2: नहीं नहीं छुट्टी।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम राहुल प्रजापत है।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: हम गंगापुर से बात कर रहे हैं।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: बाहर फूल बरसा है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीच में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर। और दोस्तों, नए तरानों के बीचों में कुछ छोटी मोटी चटपटी बातें। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं हम इस प्यारा सा गीत के साथ नहे तराने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं चटपटी कच्ची कैरी से हमारे शरीर में क्या फायदेमंद होता है।
1: कच्ची कैरी यानी कच्चा आम हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। आप इसे एफएम रेडियो कच्ची कैरी के फायदे। 1. लू से बचाने में मदद। गर्मियों में तेज धूप और गर्म हवा से लू लगने का खतरा रहता है। कच्ची कैरी का पना शरीर को ठंडक देता है और लू से बचाने में मदद करता है। 2. शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती। गर्मी पसीना ज्यादा निकलता है जिससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो सकती है। कच्ची कैरी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। 3. पाचन शक्ति बेहतर बनाती है। कच्ची कैरी खाने से पेट ठीक रहता है। गैस और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। ये भूख बढ़ाने में भी मदद करती है। 100. विटामिन सी का अच्छा स्रोत। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। थकान और कमजोरी कम करती है। गर्मी में जल्दी थकान महसूस होती है। कच्ची कैरी ऊर्जा देने में मदद करती है और शरीर को ताजगी देती है। 6. त्वचा के लिए फायदेमंद। इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने और गर्मियों में होने वाली त्वचा की परेशानियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। कच्ची कैरी का सेवन कैसे करें? आम पना बनाकर, नमक और काली मिर्च लगाकर, चटनी या अचार के रूप में सलाद में मिलाकर। ध्यान रखने वाली बातें, बहुत ज्यादा मात्रा में कच्ची कैरी खाने से कुछ लोगों को पेट में दर्द या खटास की परेशानी हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में सेवन करना अच्छा रहता है। एफएम रेडियो के लिए जो...

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तुम्हें जंग पे जाते तिलक मैंने तुम्हारी जीत के लिए लगाया था। ना जानती थी कि इस तिलक को तुम किसी और का सिंदूर बना दोगे। गुनाह है इश्क का फैसला है सूरते पाजेब में। आह कैद भी रहे और आबाद भी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है। डीएस साइंस।

और दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: प्रेम प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है लाज रखे गंगा जल।
1: बोल सियावर रामचंद्र की जय।
2: एडी सॉन्ग से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल

0: लो।
1: हाय राम।
0: अब दिल क्यों थाम लिया, क्यों थाम लिया।
1: राम राम राम राम।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
4: हर बीट में है शहर का कमाल।
5: डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
6: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
4: शहर का नया।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आपने भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बोली विसरी यादें। अब सुनोगे थोड़ी ही देर में बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

तू अगर कभी रोए ना तो समझना मोहब्बत नहीं थी। हम आज भी तुझे याद करते हैं, इसका मतलब हमारी चाहत झूठी नहीं थी।

0: दोस्तों अभी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस यानी 42।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख ले।

0: 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.9।
0: चलो दोस्तों कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, आरंभ करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6
0: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6

0: नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6 साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।
2: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
3: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन
0: रेडियो। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।

दोस्तों 4:29 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम।

दोस्तों राजस्थानी कार्यक्रम की ली लेते हैं यहीं विदाई और कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ साथ हेलो फरमाइश में लेते हैं एंट्री

DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।

0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बताएं आपका।
1: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से।
0: शर्मा जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: जब कोई ना रहे अपना, जब सुना सुना लागे।
0: बिल्कुल सुना रहे मैम, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: हेलो।
4: हाँ सर, राधे राधे।
3: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
4: मेरा नाम समता यादव, बड़कला से बोल रही हूँ।
3: समता जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
4: मुझको गाना सुनना है अमिताभ बच्चन का, एक पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी।
3: बिल्कुल समता जी, सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
4: थैंक यू भैया।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का में आपका

0: जिनका सरताज है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मनिका।
1: मनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तुझे संग प्रीत लगाई सजना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश से गाते हैं गाना।

दोस्तों 4:54 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर आपका।
1: सर बाबू खान नाम है।
0: बाबूलाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन है जो दिल में समाया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।
1: मेरा अंग अंग
0: हेलो
1: नमस्ते
0: सर। नमस्ते,
2: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान, ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान, ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानव की प्रकृति विजय की इच्छा कुछ साकार होने लगी है।
3: नमस्ते, नाम बताएं आपका। हाँ चौधरी जी, बताएं महावीर जी से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
4: बहुत
3: हाँ सर, गर्मी तो है ही, अब प्रकृति का तो अपन कर भी कह सकते हैं, और जितनी गर्मी पड़ेगी उतना अच्छा है सर, बरसात जब भी बन पाती है।
4: रेडियो टाइम पास कर रहा है कितनी गर्मी हो।
3: बिल्कुल सर, ये तो चलता ही रहेगा। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: तो गाना तो सुना देंगे, एक लाइन सुना रहा हूँ
3: जी। बताएं सर।
4: ऐ नील गगन के पंछी,
3: ऐ नील गगन के पंछी,
4: ऐ नील गगन के पंछी, चांद सितारों तक उड़ना, गर्मी अगर सताए तो रेडियो डीएस से जुड़ना।
3: क्या बात है सर, क्या चलो गाना बताओ सर चौधरी जी।
4: हाँ सर, एक सॉन्ग तो बनता है, कितनी मेहनत की है मैंने।
3: हाँ बिल्कुल, बताए सर।
4: सोनी कुड़ी हो,

0: स्वैंग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो जी, नमस्कार सर।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति, मथुरा से।
2: मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और रेडियो सुनना मेरा शौक है। आप लोगों से वार्तालाप करके मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता होती है।
2: मैं भी बहुत प्रसन्नता होती है सर, आप इतनी दूर से हमारे छोटे से केंद्र पर कॉल करते हैं, हमें बड़ा प्यारा लगता है। कैसी गर्मी है मथुरा में भी?
1: मथुरा में बहुत जबरदस्त गर्मी है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान जा रहा है, और इस वक्त लू के प्रकोप में है मथुरा वृंदावन।
2: बिल्कुल सर, हमारे भी फिलहाल 42 के आसपास है, वही सेम तापमान इधर ही है गंगापुर सिटी में।
1: जी जी जी,
2: बताएं सर आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: एक गीत है सुनना चाहता हूँ सर आपसे रेडियो डीएस पर।
2: जी बताएं।
1: रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग यू मी लुक,

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: उज्जवल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: चंद्रपुर से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फॉर्च्यूनर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: कौन
1: जी? नमस्ते, नाम बताएं आपका?
0: सजाद खान पुराने गांव।
1: सजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: गाना लिख लो।
1: बताएं सर।
0: ईशा होया दिल आखिर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो।
5: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
5: नीरज।
4: नीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: नस्किया कॉलोनी।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: 150 बजा तार।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताए सर?
1: सुनील।
0: सुनील जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर मानपुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं
0: जी
1: वो मासूम शर्मा का गाना चला दो।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: बिल्कुल चला रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: मेरा नाम ऋषि है।
1: ऋषि जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: आपका नाम क्या है?
1: मेरा भी नाम ऋषि है,
2: मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हेलो
2: हेलो,
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मैं सुनना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर एक बैठ।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5 4 3 2 1 0
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: दोस्तों 8:26 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दूसरी सी
1: बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6।

0: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीच में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: इनका सरताज है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
2: तुम कहाँ कहाँ से गुजरे? इतनी रात में हाथ देखूंगा तेरा मैं?
3: तेरा हाथ ना ऊपर की कमाई।
2: अरे बावड़ी वो शायर के आते हैं, शायरी करते हैं, गलत काम नहीं करते। नई शायरी सुनती
3: है तुम्हारे दो कौड़ी की घटिया शायरी से जिंदगी ना सुधरने वाली। सामने वाले कांस्टेबल ने सेकंड हैंड घूमनी ले ली और तुम लिफ्ट लेके चले आते हो। फिर भी क्या हो तुम है?
2: कभी देखा था ना मुझे पीता हुआ?
3: अच्छा
2: बच्चे सो गए दोनों?
3: दोनों? अरे एक ही बच्चा है हमारा।
2: फिर तो पी के आया हूँगा, चल गरम कर
3: के।
2: रे खाना गरम कर दे बाबू, तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे?
3: हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं, तुम दारू पे क्यों मैं खाना गरम करूँ?
2: मतलब तू के चावे, दारू भी तू ही पिएगी?
3: चुप कर, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुमसे शादी करके।
2: कहाँ कहाँ से गुजरे
0: ये दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आप।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

दोस्तों फिलहाल आप टून कर रहे थे 9.6 रेडियो ओडियस गंगा बोर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे थे 9.6 रेडियो ओडियस गंगा बोर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।